0: BFBS Gorkha Radio.
1: तपाईं लाई फोर्सेस डिस्काउंट्स को बारे में था सा था सही ना बने सुनी हाल होस यो विशेष गरी फौजी सेवा में सेवारत सेवा निवृत्त एवं फौजी समुदाय का सदस्य और को लागी बने तैयार करिए को विशेष छूट को व्यवस्था हो यो संग 9000 वंदा देरे डिस्काउंट पार्टनर रो जोड़िए का सन जस मार्फत हामीले ऑनलाइन तथा हाई स्ट्रीट का दुकान और का साथ थुप्रे रेस्टुरेंट देख लीएर सिनेमा का टिकट सम्बन्ध में छूट पाउन सक्छ ऑनलाइन को लागि निशुल्क यो सेवा हाई स्ट्रीट को लागि भने 4.99 पेन्स तिरेर यसबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ यसको लागि defensediscountservice.co.uk मा गएर आजै आफ्नो अकाउन्ट दर्ता गराइहाल्नुहोस् अनि थुप्रै छुटहरूको फाइदा उठाउनुहोस्
0: यो BFBS गोर्खा रेडियो हो।

जोजो लपा नेपाल भाषा या ज्याजो नेपाले निने त सुनादिपि सबकल सित दुनगलन से लसकुसा जि रश्मिला प्रजापति थौ नेपाल सम्बन्ध छिन्छ सव पि खुद तछला दो पारु थनिनि से नहुगु ला सुरुजला अलिनि नामी भाजु मेज पि ज्याजो नेपाले ना पदुक छिङे ना सुनादिल ज्याजो नेपाले स नेवा सुसम बुखत तेगु अलि नेवा मेते हाकि गुजि पछि बिसन सुगु खजुल यकु यकु बुखत दु छु बुखत दु लेर गाधा हेबले नगरपालिका यु बुखत दु अलि अथे विजयरत्न असम बढे बेको या त हंगु बुखाउँदो अलि अथे रञ्जना लिपि सिनी गयो बुखाउँदो यो कुरा बुखत दो ला जी छौ ढुङ्गा मेगु बुखत ते खला आठ बुख नका वै न घे जुया छुनी रासा गोबे उले तत रङ्गो ज्याखै बुख जाय छ मखना छुनी मला तर चिसे रङ्गो ज्याखमै चाहिँ बुखाउँ वै छुनी व एक्सेस यु ख वा पत्र पत्रिका सिकपिस म ज्याजो या ढुङ्गा चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति छुय ह मह मला उखेन यो को ख पाइ एजा छुन ज्याजो छि या न दियासा थोंगनेल अफ छि जस्तै अनलाइन मिडिया स्ट्रीम आला मखला अनलाइन मिडिया सोया सपोज फर एग्जांपल छि जे नेवा अनलाइन न्यूज दे आदु नेवा अनलाइन पत्रिका अन छि सोया दिल लासा द क्लिक को पाके स्वापु धागु था दे मला स्वापु धाउ था से होना छि क्लिक यान दिल लासा अन कांटेक्ट याउ अन ईमेल अन नंबर त दै नि अन चाहि छि वो ईमेल आईडी ले छि जे थगु बुख छोइ दिल अले वेक अप इंडस को फोन न यान दिल सा अले छु जे न्यूज बाला को कभर छि खला वो चाहि अन फोन नंबर न बे तगु दु अले अन ईमेल आईडी नदु एज अठेना चाहिँ कबडी चाहिँ कुत यान्दिस लिस्क बिरेको न्युज सबा फोटो न छेमा न्युज त चाहिँ बालाको कभर जे छि छुके छुया दिउ ख अन चाहिँ या माला कि मक्सा छिके गुली न इमेल आईडी त अन चाहिँ छुया दि माला छ त यो को ज्या ख त जुया छु नि तर वो ज्या ख यो बति बुख चाहिँ कम हे जक कभर जे ज्या जस दकले ना पांगो मेते मेरुगा चाहिँ थौयाको बुख त छसी कथ तेगु जे

di patu ka kno la sku sa jazo nepal esa nepal e jazo chhe nyana chuna dilo jazo sa ye mahanagar palika ya chagu bukha de dina ye mahanagar twa twale sakipa mohotsav yaigo jugudu ye mahanagar palika thoye bego asar 5 gate ni se 26 gate tak shukrabar wa shanibar sarvajanik tha park dawli wa chuka chuke twa twale sakipa mohotsav yaigo jugudu mahanagar chagu patrakar sammelan ya se mohotsav chhi sarvajanik yaigo du mahanagariya katha महोत्सव या उलेजिया असार पांच गते खुला मंचे व छ गते व्हीकल फ्री असन क्षेत्र संचालन यही जुगुदो नेपाली चलचित्र क्षेत्र विकास व विस्तार या त योगदान बिगु व रचनात्मक उद्योग या त समुदाय नापस्वयाग उद्देश्य थुगु ज्याझो या तनागुदका महानगर धागुदो महोत्सव अन्तर्गत लघु चलचित्र नाप चलचित्र प्रदर्शन कला व रचनात्मक उद्योग सम्बन्धी संवाद सांस्कृतिक नाप सृजनात्मक ज्याझोले स्थानीय नस्ता बोज्या या त्यंगु ख चलचित्र प्रदर्शनी नीति एलडी स्क्रीन साउंड सिस्टम नाप क्यूरेटर या व्यवस्था महानगरीय सम्पदाली से पर्यटन विभाग व स्थानीय युवा तेसा व्यवस्थापन यही जुगुदु महानगर वैगुदी अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नाप स्वाना थुगु ज्याझो या तेंगु ख महानगरीय प्रवक्ता नवीन मानन्धर पृथ्वीगु विज्ञप्ति त्वा त्वाले फिल्म महोत्सव महानगरियागु रचनात्मक सहर यात्रे प्रारम्भिक पलाजुगु दासे थुकी या त तालाकित संचार माध्यम चलचित्र कमी नाप सरकार वाला तेगु गुहालीजुगु भलसा बेकल नेतना दिगु दु महानगरपालिका आठो विशेषणा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म दी या लस्ता चाहिँ सनाया थियो मुजा खन्जुल आ अनु चाहिँ आज सुबले नेपाली व नेवा भाय गुप्रे संकिपा खन्युल सायद प्रदर्शन जुगु छ स्पेसिफाई यन्त गु मद या छ 800 चाहिँ नगु एक्सपीरियन्स जुगु ल तापन संकिपा त एना क्यों अन विशेषणा चाहिँ इन्द्र जात्रे इले जनबाले हे चोपि अन जनबाले मछिन्द्र बहाल क्लब दया दुमखला आवे कपी प्लस अले थे मिहालामी पवित्र कसा वेकन अब क्लब हेतु बेकअपी सँगै अनि मिलेज या मेगुन युसुको क्लब मिलेज या चाहिँ अन विभिन्न संकिपा त किनिकन आदिको प्रश्न जिफो कुमेगे बेसा चाहिँ असार महिना बजेट सिरेके त यागु खला रखान आसे जिफो तर अन अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव नाप स्वागत गर्न खोजुल तर आयु इले आठो वाई वाई इले चाहिँ आ सायद छुएन छुएको कभर तया कि मसँग एलडी स्क्रिनले प्रब्लम जी एना किनिको व्यवस्था चाहिँ यागु दुजी स्वे गेजी खा आथौ नक्तिनी दुई गते जुल असारिया पाँच गते हामीले थो शुक्रबार छ गते रह्यो शनिबार शनिबार सिठी नखन सिठी नखाए बारे न छोछौ खाला मास्ती होला थुक्सी सिठी नखा चाहिँ बचल लिपाला त मलाई बिसे अन्न लगा दोजिया चाहिँ असारे लावला तर सिठी नखा लगादै चाहिँ झिनेवा तेगु थगु हे व वातावरण दिवस मतलब सिठी नखा भले चाहिँ लया गुलिन अन प्राकृतिक मुहान्त दु व सफाइएको दिन अदगादैको तुन्थी अले लोहिती बुगाजा अयु चाहिँ सफाइएको थिए तर आ थो विशेषणा सहरी क्षेत्र स्वयो खसा थो लोहिटी जेन चाहिँ लोहिटी दल्ला लोहिटी र खस नारा तर लोहिटी लोहिटी त न तस्को हे कम ज्याउ नुगला लोहिटी स्रोते मरे नुगला आ दक्षा चाहिँ कोइठङ्क गामुया व प्लास्टर या नाम खला धलान या एना छेन्दिने बलेला स्रोत दको सुनाउ नुगला अले आ तुन्थी हाल न अठे ख तुन्थी न ल अबे उ तस्को मुजि नुगला ए न सिम्बलाइज्ड रूप हे जो सा छु छु तुन्थी तदु व तुन्थी सफायाको ज्याजी गन गन तुन्थी व प्र्याक्टिकल ज्यान यान चोमदु लापरिसा एकदमै थो ये येलो महानगरपालिका शिवे पचतापाको जस्तै येले न हामी मेगुन न वरा तदुनी पचतापा त पाउने अवस्थित अनजुल अले खोप जुल थिमी जुल मला अनुयुक्ति थासे भन्नु बले चाहिँ व तुन्थी सफाई अन्त चाहिँ व लुज एस वे खनि होला अले उले जको मको सिटी नगर आबे त सको सक्क व नेउदि अले त आठके सिग्निफिकेन्स यु खत छिस चाहिँ आ व सिटी नगर खनि यो पूजा यो सांस्कृतिक पक्ष त दुवे जुल मेन चाहिँ व नेउ खला आथौ गरे व बारे महिना नेउदु एज ओके यु बति चाहिँ बति चाहिँ महत्व कम जुला थे जु मखला बारे महिना छिटिबा दुसा वा छिजा अनु थासु छ नि हामीले न नेउ खन दिसा नापा लेला वो ने तो कि सिट नखा वेमा कि भेवेमा सायद कि बुधी वेमा जे होला दस का नापा सब मथुरा से हामी जाउँ कना दिउँदा नापा खे ने त खे छगल खे ने त चाहिँ बुधी वेमा
मेबले साथी खेने वे मरु आसुले खें मरु का खें तस्कम मजोगा आ आठे वो व्यावसायिक रूपां खाले ही मखनी साउबले ला वाले खेने मास्टी वे को ये प्यासुनी हो बुद्धि वाले से बुद्धि जो मत समेत से बियां छगो अज मेबले इंदला बागा बागा ताना बियां ख्लाब ले संतान छम्जे Isn't any? Lewilla Hose, Sue, John Madi Zula, was John Madi Zuma said the same, Choki and the Kimo, maybe the Zebaba Bag on the year to Toscana by Consulum, Motura Sammy, you go down the Dumla, Love of Sedo, you Harari, the easy side, we go. Yes, Ozago, Newasamazo, Ali Asa, Idomeji, commercialized Newasamazi Dumla, Tifasco Dusashi, Aguno, Polygar, Nyawilena, Nif. ऐसा सीटी ना हो, चीजों विशिष्ट चाहूँ ना हो, अलेह तो ना खाले जैसे मेन रूपांतर जैसे नई गुड़ाई को जैसे वो ये जुला, ऐसे आ सीटी ना हो या चिकन दा, भिन्न तो ना बीचे ज़्यादा सजी, चाहूँ मिस्वेटे ना

कि पादुङका खन लसको से ज्याझो नेपाले से नेपाले ज्याझो छिङने नचुना दिल छने ज्याझो नापदु ज्याझो स आछगु मेगु बुखते एतना श्रेष्ठ समाजवादी व गुदावडी नगरपालिकाया मंका गोसाले रञ्जना लिपि सेने ज्या छुगुदु श्रेष्ठ समाजवादी व गुदावडी नगरपालिकाया मंका गोसाले लच्छी अंकया निशुल्क रञ्जना लिपि प्रश्न ज्याझो गोदावरी नगरपालिका 11 वडा ज्याकुथि सोमबाको ज्याकुगुदु श्रेष्ठ समाज यानाय वासुदेव श्रेष्ठ लस्को सेना निहागु ज्याझोले लच्छी अंक क्लासे बुति कया तालापी व तालापी संकल्प वज्राचार्य नाप देवान महर्जन लिउ व सलिना महर्जन लियालिउ लापिन्त मोपाहा उपमेयर मुना अधिकारी नेपाल लिपि गुथिया नाय निरञ्जन ताम्राकार व प्रशिक्षक सुदेन कुमार महर्जन पिस दसी पौल लागु ख भाषा संस्कृति थिए ज्यागु सेनिगु धैगु मचानी छे सेनमा धैगु दोस्रो कथा उगु प्रश्न ज्याझोले सोङ्गु तगी निसे नेपाल भाषा स्नातकोत्तर तगी या बनामी पियाना मुक्क सुई खुमेस्या लक्ष्य अङ्क कक्षा चुना जाँच बसेको ख वडा नाप समन्वय याना शङ्खदार साखवाया छ्वाता तेया निधि आवेगो आर्थिक वर्ष हेर्नुको बजेटे उखियाना व्यवस्था यागु बच म पाहा उपमेयर अधिकारी बिहादिगु दु ज्याझो स नवासी भ्या या त प्राथमिक बीमा भयत गब्लेन अपमान अपहेवला या मजु धाका गाली स्कूल या प्रिन्सिपल रविन्द्र शर्मा दयादले सा उखी या त मागु ग्वाली यागु बचान 11 वडा या नाय अध्यक्ष नील कुमार देसारम व्यादिगु दु अले विशेषना थो नेपाल यंग हे आठो चाहि रञ्जना लिपि सेकेगु ज्याझ्व छनु दु नेपा दुने जक मुख नेपा पिनि न विशेषना चाहि दार्जिलिङ सिक्किम आसाम अनथेंगन लिपि सेनेगु ज्या लिपि सेकेगु ज्याझ्व छनु दु थसा तस्क हे बालागु योगदान यापिन त चाहिँ सम्मान यागु थ चाहिँ यही महानगरपालिका वडा नम्बर 8 हे सामाजिक सेवा योगदान यापिन त यान छ पिन त हनी ज्याझुगु खजुल अले अथे मेमे गुना भुखन दु त को भुख चाहिँ थौ जी तथा ते मखन अले मेगो भुखन गादैगो तहले मंका समाज यागु हिदान या बारे दु बौद्ध युवा कमिटी यहाँको बौद्ध जागरण शिविर को चागु सम्बन्धे दु अले अथे नृपेन्द्र लाल श्रेष्ठ नेवा पत्रकार दु नाय बेको या त सुशासन पत्रकारिता सम्मानित यागु बुख दु अथे काभ्रे जिल्ला नेवा पत्रकार दु या अन अधिवेशन जु या नुमा नाय सम्बलाल श्रेष्ठ निर्वाचित जुगु बुख दु यो को बुख त दु तर द कोन आस थौ ते मखन जि खाली हेडलाइन जुल तया अदकले लिपा आ वर्ल्ड कप ज्या चंगु दु मखला आ वर्ल्ड कप छि पक्का न सोई छना दिलो जी वर्ल्ड कप स्वे बले चाहिँ आ नेपालले बच्चा इ मिले जु मजु कि चाने होइगु जुल कि चाहिँ कने कुन सुथे होइगु जुल मखला आ सुथे निसे आ थैट यो टीम जुरकिरा मण्डस सुथे निसे न सोई तर ओके न छिगु न्ह पाजिगु ज्यासिनिगु ज्याइ त हैम्पर जुगु ल जुया छ मजु ल उलि जक न मखो आ त क चाहिँ नापा नापा वर्ल्ड कप स्वे त दिसन दिबा पुलि मुआ तर थुक्सि निसे वर्ल्ड कप स्वे त 999 तक पुल्ला ल त्याले 1000 रुपैया जुल भले थो चाहिँ फ्रिजी मागु ख यो स्याल हुन चाहँ तर थो संसदे तक नथेन थो ख विश्वकप फुटबल निशुल्क स्वे दैगो व्यवस्था या त नेकपा या सांसद प्रवेश कुमार हवाल सरकार या त माग्याको थो थो चाहिँ थौ सके हे जुगु जुल प्रतिनिधि सभा बैठक नवासे उबेकल उक्त माग्याको जुल नापा नापासा आठो दिन चाहिँ निशुल्क हे स्वेगु ख निसा तर थुक्सी निसे तेवा पुलि माल यहाँ वर्ल्ड कप फिभर आतस्क चोलेना चङ्गो दु मला मनो त जर्सी फिना लिजिगु फुटबल मितेगु अजागो विविध खत यान छ नदिगु दुसा अमेरिका थेङ्का फुटबल स्वेगो अन्थ्यङ्गो वना फुटबल स्वेगो जान सुना सुना यान चङ्गो दु थोय क्रमे चाहिँ छम नेत्री देहामाला उयो कमला रामकुमारी छाक्री उयो चाहिँ अमेरिका बना फुटबल सो खे चाहिँ फेसबुक चाहिँ मिट सजा छ त थुली मसी देवा छ म नेता कि घेना होला ढका चाहिँ अन छ उयो छ म चाहिँ नाचेको बनाएको चाहिँ छिक पनि हेर्ने तयार गर्छ ल यहाँ चाहिँ इन्जोय एन्ड निसा थगु छ मजा छ ना फुटबल सो यदि छ तर छिक पैसा देवाला फुले माला मुला मैले थुक्सी आन लाला थिए व सार्वजनिक प्रदर्शन या मदै गोरका चाहिँ सरकार नियम दिएको दु प्रहरी या के अनुमति कया छ के छि चोके चोके दैन तरङ्ग स्क्रिन त्यहाँ या उखासा अब पर्मिसन कया चाहिँ यहाँ नदीमा थौ या त थुली हे भुख त से प्राविधिक संयोजनका लागि रविन्द्र या त सुभा देशासी जी रश्मिला छिप्पी बाखे ब्या ज्याझो निना दिगुली यो कुछ सुभा